सर्वान् पथो अनिर्णा आक्षीयेम। वेदो अखिलो धर्ममूलम् तद्विदांच स्मृतिशीले। धर्ममूलमिदं जगत्। परमेश्वरः सर्वं जगत् सृष्ट्वा तस्य जगतः परिपालनाय जगता सह वेदमपि सृष्ट्वा कर्माणि यज्ञान् अपि सृष्टवान्। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोस्तु इष्टकामधुक्। तादृश वेदः, वेद प्रतिपादित धर्मः, वेद प्रतिपादितः परमात्मा, एवञ्च सर्वमपि ऐहिक आमुष्मिक सुखं मोक्षपर्यन्तं सर्वं वेदे अन्तर्गतम्। धर्मः नाम द्विविधः, प्रवृत्तिधर्मः निवृत्तिधर्मः। प्रवृत्तिधर्मः अस्माकं जीवनाय, इन्द्रियसुखाय, देवलोक ब्रह्मलोक वैकुण्ठ कैलाससुखाय। निवृत्तिधर्मः आत्मरूप पूर्णानन्द ज्ञानाय। एताभ्यां धर्मभ्यां लक्ष्यभूतः परमात्मापि धर्म इत्युच्यते भगवद्गीतायां। तादृशस्य वेदस्य अनन्तशाखाभिन्नस्य एकस्मिन् जन्मनि पूर्णतया अध्ययनम् एकेनापि कर्तुं न शक्यते। अत एव ऋग्यजुस्सामभेदेन अथर्वरूपेण च तत्तच्छाखारूपेण वेदव्यासः कृतवान्। अस्मिन् विषये वेदाध्ययने अतीवश्रद्धावान् कश्चन भरद्वाजः ऋषिः। तादृशभरद्वाज उपाख्यानेन सह अस्मिन् दिने अहम् आरम्भं करिष्यामि। வேதம் என்பது நம்ம சனாதன தர்மத்துக்கு முக்கியமான அடிப்படை மதநூல். ஒவ்வொரு ரிலிஜன்லேயும் அவாவால் கேட்டால் அவாவா ஒரு மதம், அதுக்கு முக்கியமான நூல் வந்து பைபிள், குரான் மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கான். நமக்கு மூலமான நூல் என்னன்னு கேட்டால் சொல்லக்கூட தெரியாத நிலைமையில் நாம் ஏதோ ஃபாஸ்ட்டாக போயின்ட்டுருக்கோம். இந்த ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் இவனுக்கு ஃபாஸ்டிங் தான் மிஞ்சிருது, வேலைக்கு சாப்பிட கூட இல்லை. இப்போ குழந்தைகள்லாம் வேலைக்கு சாப்பிட்றது இல்லை, குழந்தை குட்டிகளை கவனிக்கிறது இல்லை, அப்பா அம்மாவை கவனிக்கிறதே இல்லை,